की बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।

स्टूडियो ऑफ जॉय कोलकाता और उस कोलकाता के दी रियल रेडियो 107 एफएम रेनबो पर ढेर सारा प्यार और अपनेपन के साथ हाजिर है आपकी अपनी आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत लेकर आपका मॉर्निंग म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम नॉन स्टॉप गपशप। और आज है 27 अगस्त। जी हाँ, 27 अगस्त के दिन एक खास दिन भी मनाया जाता है, एक दिवस मनाया जाता है, वो कौन सा है ये भी बताऊंगी, लेकिन आज किस विषय पर हम बात करेंगे, अजी जो विषय है वो क्या बताऊं, हम सबसे जुड़ा हुआ है, ऐसा विषय जो हम सबसे जुड़ा हुआ है और हम सबकी खुशियों से जुड़ा हुआ है। अब ये बात और है कि उन खुशियों को आजकल पता नहीं किसकी नजर लगी है, शायद मैं कहूँ मॉडर्निटी की लगी है या फिर क्या कहूँ मैं, समझ तो आप भी रहे होंगे, लेकिन आपको बता दूँ, घुमा फिरा के अब नहीं कहूँगी, बात सीधे आती हूँ, लाती हूँ पॉइंट पे कि आजकल सबसे बड़ी जो विडंबना देखी जाती है समाज में वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिली बढ़ते जा रही हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों से मैंने बातचीत की और इस निष्कर्ष पर पहुँची कि खुशियों का असली खजाना जो है वो जॉइंट फैमिली में ही है, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें ताकि जॉइंट फैमिली के फाउंडेशन को कमज़ोर ना होने दें और उसकी खुशियां जो है दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ती जाए। फिलहाल पहला गाना आप सभी के लिए कोकिल कंठी लता मंगेशकर की आवाज़ में।

ऐसा है दोस्तों कि जब बात कर रही हूं मैं कि कैसे हम जॉइंट फैमिली के फाउंडेशन को मजबूत करें ताकि ये जो न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा से ज्यादा पनप रही है वो कम हो, क्योंकि खुशियों का खजाना छुपा हुआ है जॉइंट फैमिली में। जॉइंट फैमिली को टूटने से बचाने और एक साथ मिलकर रहने के लिए आपस में समझदारी, प्यार और कुछ जरूरी बदलाव लाना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे अहम कदम ये है कि रोजाना बातचीत करें, एक दूसरे की निजी जिंदगी पर्सनल स्पेस का आदर करें, जिम्मेदारियां बराबर बांटें और पुराने

भेदभाव भूलकर आपसे रिश्तों को पहले जैसे रखें। रिश्तों और समय, ये जो है ना, इसका बहुत ध्यान देना पड़ता है। रोजाना सभी परिवार के लोग अगर थोड़ी देर के लिए भी एक साथ बात करें तो हर एक के दिल में जो है स्ट्रेस लेवल जो होता है ना, वो कम हो जाता है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम दुनिया में अकेले नहीं हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिली में देखा जाता है ना कि मतलब दो लोग, तीन लोग, चार लोग हैं तो चारों अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं या फिर अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन हर चीज़ के लिए समय है, एक दूसरे के लिए नहीं होता। और इसी बात पर ढेर सारी बातें आप भी साझा करेंगे, उसके लिए डायल कीजिएगा 2243-7912। बाय द टाइम यू डायल द नंबर, मैं आपके लिए अगला गाना प्ले करती हूँ।

0: स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 10:17 और फिलहाल हमारे टेलीफोन लाइन पे जुड़े हैं यूपी आजमगढ़ से श्यावर राय जी। हेलो
1: जी,
0: नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ।

0: कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप में श्यावर राय जी। और ऐसा है कि आज जो विषय है वो तो आप सुन ही रहे हैं कि हम ऐसा क्या करें ताकि जॉइंट फैमिली के नींव को मजबूत करें, और जो मतलब जितनी तेजी से न्यूक्लियर फैमिली पनप रही है उस तेजी को जरा हम उस पर ब्रेक लगाएं।
1: संयुक्त परिवारों को बचाना ही होगा। अगर संयुक्त परिवार बचाए नहीं गए तो समाज खोखला हो जाएगा। समाज के मूल्यों में जो गिरावट आ रही है, बच्चे अपने माँ बाप को पहचान नहीं रहे हैं, बुढ़ापे में उनको वृद्धाश्रमों में ले जाकर छोड़ देते हैं। पहले के परिवारों में जो समरसता रहती थी, जो सामंजस्य रहता था, जो तालमेल रहता था, उसका कोई सानी नहीं था। उन परिवारों में कोई भी किसी के बच्चे को संभाल लेता था, किसी बूढ़े को डर डर बोलना नहीं पड़ता था किसी बात के लिए। और तो हुए बहुएं घर की, सब लोग उनको संभाल लेते थे। बीमारी की हालत में अगर कोई एक व्यक्ति बीमार पड़ता था तो चार पांच तीमार तैयार हो जाते थे और उनकी तीमारदारी करते थे और अच्छे से देखभाल होती थी। क्या नर्सेज करेंगे, घर की बहुएं कर लेती थी। जो काम बड़े बड़े अस्पतालों में नहीं हो सकता था वह परिवार नामक संस्था में घर पर ही हो जाया करता था। लेकिन आज स्थिति विचित्र हो गई है। समाज इतना वस्तुवादी हो गया है, इतना अपने में संकुचित होता जा रहा है कि परिवार का हर सदस्य ऐसी मनोवृत्ति हो गई है लोगों की कि लोग आपस में जुड़ करके बच कर रहना नहीं चाहते।
0: अच्छा, इसके पीछे सिर्फ एक
1: मेरी बीवी,
0: हाँ,
1: मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, बस परिवार की इसी यूनिट को लेकर लोग अलग थलग पड़े हुए।
0: अच्छा श्यावर राय जी, माफी चाहती हूँ आपको टोकने के लिए, रोकने के लिए, पर मेटेरियलिस्टिक सुख के लिए ही क्या सिर्फ लोग ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर फैमिली की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर इससे भी बड़ी कुछ बातें हैं, जैसे कि एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होता है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, ईगो प्रॉब्लम होता है।
1: कॉम्प्रोमाइज प्रॉब्लम और ईगो, कहीं किसी जेठानी ने देवरानी को कोई बात कह दी तो उसकी गांठ बात करके लोग जिंदगी भर के लिए मुंह फुला देते हैं।
0: लेकिन कहीं ना कहीं उसका भुगतान तो वो भी करते हैं ना।
1: भुगतान तो हो रहा है, क्योंकि जो व्यवहार वो अपने माता पिता के साथ, अपने बड़ों के साथ, संयुक्त परिवारों में करते हैं, जब उनके बच्चे बड़े होते हैं तो दे आर पेड इन द सेम कॉइन।
0: यस,
1: और उसी तरह से उनकी भी दुर्दशा होती है, फिर उनको भी किसी ओल्ड एज होम में बिताना पड़ता है और जाकर के किसी तरह से जिंदगी काट रहे होते हैं।
0: अच्छा, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो एक तरीका है ना, कि जैसे कि जब जॉइंट फैमिली में लोग रहते हैं, संयुक्त परिवार में, तो क्या है ना कि तीन जनरेशन जब साथ होते हैं तो बच्चे भी जो है वो संस्कृति को लेकर आगे बढ़ते हैं, है ना,
1: घर की, हाँ, संस्कारित होते हैं।
0: हाँ,
1: वो जानते हैं कि घर में चाचा, बाबा, फुआ, आंटी, किसका क्या सम्मान है, कैसा संबंध है। इन बातों से जो संस्कारित होता है वह समाज को, लोक लज्जा को निभाता है और उनके साथ बराबर ठीक और बढ़िया बर्ताव करता है। और इस तरह के जो बर्ताव की नींव पड़ती है वो उनके भी जीवन में आगे चल करके उनके बच्चे भी वैसे ही करते हैं। लेकिन आज समाज जो टूट रहा है, समाज के जो परिवार टूट रहे हैं, अलग अलग बिखर रहे हैं, उसका कारण केवल स्वार्थपरता और संकुचित मनोवृत्ति है। उसको दूर भगाना ही होगा, उस मनोवृत्ति पर काबू करना होगा। और यह एक दिन में तो होना नहीं है, धीरे धीरे धीरे धीरे उन परिवारों को समाज में एक बदलाव की जरूरत है, एक सांस्कृतिक चेतना की जरूरत है। और पुराने परिवार, पुराने ढांचे के परिवार बने नहीं, पुनर्स्थापित नहीं हुए तो समाज की दुर्दशा असंभावी है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अगर एक सांस्कृतिक आंदोलन नहीं हुआ, लोगों में जागरूकता नहीं आई, तो परिवारों के ढांचे चरमरा उठेंगे।
0: बहुत अच्छा लगा कि आपने बड़े विस्तार से और बहुत धैर्यपूर्वक आपने सारी बातों को बखूबी बयां किया, और हमारे श्रोता जो है शायद कहीं ना कहीं वो भी इस बात पर ज़रूर गौर फरमाएंगे और कहीं ना कहीं अपने दिल के तार अपने अपनों के साथ जोड़े रखने की कस्में मन ही मन खाएंगे और रखेंगे ख्याल अपना और अपने अपनों का भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्यावर राय जी आजमगढ़ यूपी से जुड़ने के लिए।
1: आपका प्रोग्राम बहुत कैप्टिवेटिंग है और मैं तो इससे बंधा हुआ हूँ जब से शुरू हुआ है।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए, और फिर जब समय मिले तो बिल्कुल जुड़िएगा। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।
2: चिक बम बम बम चिक चिक बम।

0: वर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: स्टूडियो की घड़ी में समय उछला है 10:29 और 53 सेकंड और फिलहाल देखते हैं कि कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में जो हमारे साथ जुड़े हैं, बता दूं कि दिल्ली से चंद्रमोहन गिरी जुड़े हैं और देखते हैं कि आज के विषय जो हमने विषय रखा है उससे संबंधित उनके क्या विचार हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ चंद्रमोहन गिरी जी कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में।
2: धन्यवाद सुलक्षणा जी।
1: और ऐसा है कि आज जो विषय है वो ये है कि मतलब हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में ये देख रहे हैं कि न्यूक्लियर फैमिली जिस रैपिड स्पीड के साथ ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है, तो क्या कारण है कि इतने न्यूक्लियर फैमिलीज पनप रहे हैं ज्यादा से ज्यादा और कहीं ना कहीं ज्वाइंट फैमिली की जो नींव है वो हिलते हुए नजर आ रही है। तो हमें क्या करना चाहिए ताकि हम ज्वाइंट फैमिली संयुक्त परिवार के जो फाउंडेशन है उसे और स्ट्रॉन्ग बनाए और मजबूत बनाए।
2: बिल्कुल सही। देखिए, पहले तो ये बताऊंगा कि पहले ज्वाइंट फैमिली क्यों रहती थी और अभी न्यूक्लियर क्यों हो गई है। ज्वाइंट फैमिली पहले इसलिए रहती थी क्योंकि सबका एक ही कारोबार रहता था, एक ही जगह रहते थे सब मिलजुल के, एक साथ जैसा खेत हुआ कोई ऐसा गाँव वगैरह में रहते थे सब एक जगह रहते थे, एक ही आंगन रहता था, एक ही ज्वाइंट फैमिली उस टाइप रहता था। धीरे धीरे समय बदलता गया, हर लोग जॉब करने के उसी फैमिली से लोग जॉब करने के लिए बाहर निकलने लगे, तो करते करते आज की डेट में ये हो गया कि सब न्यूक्लियर फैमिली एक तरफ बढ़ गए हैं। अब मुद्दा पॉइंट ये है कि उसके ज्वाइंट फैमिली के फायदे बहुत ही थे कि सब एक दूसरे का अगर एब्सेंस में भी ख्याल रखा जाता था फैमिली के लिए। न्यूक्लियर में अब ये हो गया कि फैमिली सिमट के हस्बैंड वाइफ और बच्चों में रह गई है। मैं तो जरूर ये कंसर्न तो है लेकिन अभी किसको रोका तो जा नहीं सकता क्योंकि यही है अभी आपका स्थिति वही बता रही है।
1: नहीं, लेकिन अगर मैं कहूं कि देखिए जॉब तो है ही है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इसके अलावा कहीं ना कहीं ये भी है कि आजकल लोगों में वो सहन शक्ति नहीं है, वो एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि मतलब एक क्लास वाली बात आ जाती है, परिवार एक ही होता है लेकिन होता है कि नहीं मेरा तो हाई प्रोफाइल जॉब है, मेरा भाई जो है वो उस टाइप का जॉब नहीं करता, उस प्रोफेशन में नहीं है, तो चलो उसको एक मतलब लो फील कराते हैं और फिर जो है वो एक अलगाव वहां से शुरू हो जाता है। तो कई सारी जो मतलब विकृतियां हैं, जो नेगेटिविटी है जो दिमाग में है, कहीं ना कहीं अगर हम उसे कम करें तो साथ अगर नहीं भी रह पाए तो ऐसा तो हो सकता है कि त्योहारों पर एक साथ मिले जुले, क्योंकि मान लीजिए जैसे कि कल रक्षाबंधन है, पहले क्या होता था ना कि मतलब हर परिवार में वो खुशियों का एक मौसम आ जाता था त्योहारों में, लेकिन अब ज्यादातर देखा जाता है कि टेक्नोलॉजी के कहिए या फिर आप अपने काम का हवाला दीजिए, लेकिन ये होता है कि अब तो SMS कर देते हैं लोग और कह देते हैं हैप्पी रक्षाबंधन या ज्यादा से ज्यादा

0: अगर किए तो फोन कर लेते हैं, तो ये भी तो उचित नहीं है कहीं ना कहीं।
1: बिल्कुल सही। अब जैसे वही कह रहे हैं, ठीक है आज की स्थिति है कि आप डिस्प्ले में रह रहे हो, पर हाँ जैसे जैसे जो समय होता है, जैसे कोई फंक्शन हुआ है, जैसे जैसे कल आपने एग्जांपल दिया रक्षाबंधन का, 365 दिन लगता है, इसमें एक दिन के लिए आप प्लान पहले से कर सकते हैं, भाई इसमें मैं जरूर अपने सिस्टर के पास जाऊँ, सिस्टर भाई के पास आ सकती है। तो
0: और अगर अच्छा ऐसा ना करें कि अब से हम एक ऐसा पहल करें कि जहां मम्मी पापा रहते हो वहीं भाई बहन भी पहुंच जाए, अगर वो शादीशुदा है तो इसमें क्या होगा कि डबल बुनांजा खुशियों का हो जाएगा, माता पिता से भी मिलना होगा।
1: कह रहा हूं, हाँ। ये चीज को ओवरकम करती है, आप अगर समय पे किसी फंक्शन में सब परिवार एक साथ जुटता है उसका अलग ही मजा रहेगा, वो तो ये चीज को कमी को पूरा कर देती है ये चीज को। तो ये होना चाहिए, इंसान को हमेशा भले किसी वजह से बुला रहे हो अलग, लेकिन समय पे किसी उसमें जरूर पहुंचे उस दिन पे, नहीं भी है तो किसी वजह से आजकल आप देखेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस देख रहे हो, वर्चुअल भी आप कर सकते, आप आ नहीं सकते, जैसे अब्रॉड में कोई ले रहा है तो वहां से तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो वर्चुअल भी ज्वाइन कर सकते हैं ये करके।
0: हाँ
1: मिलना जरूरी है, वो दूर करना दूरी रहने से रिश्ते और क्लोज होने चाहिए करके।
0: ऐसा है ना कि दिल से दिल तक का कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए।
1: बिल्कुल एग्जैक्टली, दिल का रिश्ता बजुड़ा रहना चाहिए, आदमी डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता, आजकल कहीं जब कुछ मिनटों में आदमी कहीं कहीं ट्रेवल कर लेता है और हो गया रखता है।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा आप जुड़े दिल्ली से, और जब भी समय मिलेगा तो बिल्कुल जुड़िएगा, क्योंकि आप जैसे श्रोता जब जुड़ते हैं तो कार्यक्रम में चार चांद लगते हैं। और अगला गाना आप सभी के लिए फिल्म कर्तव्य से उषा मंगेशकर, शहनशाह तरन्नुम, मोहम्मद रफी की आवाज में, चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा।
1: थैंक यू।

0: जवाब तुम अपने घर जाओ। देखो मुन्नी बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, जाए तो कैसे नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी।

एक विशेष सूचना। एक सौ सैंतीसवीं डाक एवं पेंशन अदालत से संबंधित सूचना है। मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्कल की अध्यक्षता में दिनांक 22/9/2026 को पूर्वान 11 बजे मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल योगा योग भवन पी 36 CR एवेन्यू कोलकाता 7,12 में गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 137वीं डाक एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पेंशन संबंधित बातें जो है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की डाक सेवाएं एवं डाक घरों से पेंशन लेने वाले पेंशन भोगियों के पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यौरा जो है वो उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री SC दास, सहायक निर्देशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल P36 CR एवेन्यू कोलकाता 7,12 के नाम से भेजी जाए और ये डाक या ईमेल adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 31/8/2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हो। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या नोट कर ले 0332215500 या 0332216012 या फिर एक और नंबर नोट करें 0332215000 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक पेंशन अदालत के आवेदनों ईमेल पर डाक अदालत पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। डाक एवं पेंशन अदालत के उत्तर अधिकार आदि से संबंधित विधेयक मामले एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई।

म्यूजिकली योर्स यानी कि 107 एफएम रेनबो, हाँ जी वही चैनल जहां हम और आप कनेक्ट होते हैं हार्ट टू हार्ट, यानी सी दिल से दिल तक हमारा कनेक्शन होता है। और ये समय होता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम नॉन स्टॉप गपशप। और इस सफर में आपके साथ है आपकी आज फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत। और आज हम बात कर रहे हैं कि परिवार की खुशियां जो है ना वो न्यूक्लियर फैमिली में नजर नहीं आती है उतना जितना कि छुपा होता है जॉइंट फैमिली में। और इस विषय से संबंधित अगर आपको भी कुछ कहना है तो बिल्कुल कहिएगा और हाजिर हो जाइएगा टेलीफोन लाइन पे। अभी कोई तो थे हमारे कॉलर फ्रेंड, लेकिन कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है।

अभी आपने सुना फिल्म क्या कहना का टाइटल ट्रैक हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, और अगला गाना आप सभी के लिए 107 एफएम रेनबो कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म 21 से। अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे बड़े खूबसूरती से कलमबद्ध किया है और संगीतबद्ध किया है व्हाइट नॉइस कलेक्टिव्स ने, और फिलहाल ये खूबसूरत गीत आप सभी के लिए।

ऐसा है दोस्तों कि जब हम परिवार की बात करते हैं तो परिवार की बात करते ही कहीं ना कहीं वो खुशियां जो है ना, लगता है कि आसमान से बरसती है जब कोई फेस्टिवल हम मनाते हैं एक साथ तब। और ऐसे में कल रक्षाबंधन है।

और रक्षाबंधन पर मैं यही दुआ करती हूँ कि जितनी भी धरती पर बहने हैं, जितनी भी भाई हैं, सबके दामन खुशियों से भर जाए। जो पास है, मिल पा रहे हैं और अपने भाई की कलाई पे राखी बांध रहे हैं, उन भाइयों के साथ साथ उन भाइयों तक भी वो खुशियां पहुंचे किसी भी रूप में, जो दूर हैं, परदेश में हैं, या फिर हमारे जो सैनिक हैं, जो सेना में हैं, जो हमारे जवान हैं, जो देश की रक्षा करते हैं और हमारी खुशियों के लिए जो है वो बहुत सारी कुर्बानियां देते हैं, उसमें अपनी खुशियों की भी कुर्बानी देते हैं, क्योंकि उनके नसीब में हमेशा नहीं होता कि हर त्यौहार हम एक साथ घर पर मिलकर बिताएं। तो आप सभी के लिए एक बेहद खूबसूरत गीत रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में, और जितनी भी तैयारी करनी है, मिठाइयाँ बनानी है या फिर क्या क्या लेकर चलना जाना है भाई के पास, वो सारी तैयारी भी तो करनी है, उसमें भी काफ़ी समय लगेगा। तो आप सभी के लिए किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से ये ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वाला जो एंथम है, कैसे प्ले ना करूँ मैं। आनंद बख्शी ने बड़ी खूबसूरती से इस गीत को कलमबद्ध किया है और आरडी बर्मन ने संगीतबद्ध किया है। किशोर कुमार की आवाज में इस गीत को सुनते सुनते आज्ञा दीजिए अपनी रेडियो फ्रेंड सिलेक्शना पर्वत को, और हमेशा की तरह यही कहूंगी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपने चारों तरफ खुशियों के फूल बिखेरते रहिए। और इसी के साथ बता दूं कि आज विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है वर्ल्ड लेक डे, विश्व झील दिवस, और इस बारे में जितना भी आप अपने अपनों से चर्चा करें कि कैसे हम झील के जल को संरक्षित करें, साफ करें, क्योंकि जल है तो आने वाला कल है।

इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। हम भी दुश्मन तो नहीं हैं अपने, गैर को तुझसे मोहब्बत ही सही।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो।

क्या आपके दिल को भी ऐसे ही किसी तीर ने बीधा है जिसका निशाना कभी नहीं चूका? क्या अटपटा सा सवाल आप सोच रहे हैं मैं पूछ रही हूँ, लेकिन वाजिब सा सवाल है, इतना अटपटा भी नहीं है। जरूर किसी ने बीधा होगा आपका दिल ऐसे ही किसी तीर से जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। फिलहाल तो मैं ऐसे गीत लेकर आई हूँ तीन का तड़का में, जिनका जो झाल है ना, बांग्ला में हम कहते हैं तीखापन जो है उसको झाल कहते हैं। तो इन गीतों की एक खासियत है, मतलब आपको बांध के रखेंगे ये, आपको थोड़ा सा तीखा भी लगेगा साथ ही स्पाइसी भी लगेगा और कहीं कहीं मीठा मीठा स्वाद भी आने वाला है, यानी एकदम मिक्स एंड मैच, बिल्कुल हमारी हिंदी फिल्मों की तरह जहाँ हर इमोशन का एकदम सटीक बैलेंस हम देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। लेकिन फिल्मों की बातें करने से पहले दो बेहद जरूरी बातें। हमें मौसम विभाग द्वारा मिली ताज़ा जानकारी के अनुसार आपको ये बताना पड़ रहा है, बल्कि आपको चेताना पड़ रहा है कि हल्की से मध्यम बारिश गरज के साथ छींटे और बिजली गिरने के आसार हैं। जी कहाँ, पश्चिम मेदिनीपुर जिले के कुछ एक इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और ये जो चेतावनी दी गई है ये आने वाले 2 से 3 घंटों के लिए दी गई है। और केवल मिदनापुर का ही ये हाल नहीं है, ऐसी ही एक सिमिलर वार्निंग, सिमिलर चेतावनी दी गई है बांकुड़ा, झारग्राम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग जिलों के लिए भी, जहां पर इसी तरह की हवा चलने वाली है, गस्टी विंड और हल्की से मध्यम बारिश होगी, साथ में आंधी तूफान आने के तो आसार हैं और गरज के साथ छींटे पड़ेंगे, बिजली भी गिरेगी, इसलिए आप लोग सावधान रहें। ये भी आने वाले 2 से 3 घंटों की चेतावनी है जो हमें एकदम ताज़ा ताज़ा जानकारी दी है मौसम विभाग ने, तो बहुत जरूरी है आपके लिए सावधान रहना। तो आप सावधान रहिए, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए और हमारे साथ जुड़ी रहिए, क्योंकि चैनिका लेकर आई है कार्यक्रम 3 का तड़का, ओनली ऑन FM रेनबो कोलकाता।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: सुन रहे हैं आप तीन का तड़का चेरिका के साथ, और हम शुरू करें फिल्मों की खबरें। अगर तो सबसे पहले श्रद्धांजलि देना चाहूंगी कुकु कोहली को। फिल्म निर्देशक कुकु कोहली अरुणा ईरानी के जीवन साथी आपने इसी हफ्ते मंगलवार अपने प्राण त्याग दिए, और बीमारी के चलते आप अस्पताल में भर्ती थे। बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में याद आती हैं जब कुकु कोहली का नाम जहन में आता है। अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर अपने हैंडल पर उन्होंने लिखा, इस बात को मेंशन किया, श्रद्धांजलि।

0: दी उन्होंने और लिखा बहुत ही एक हार्ट रेंचिंग मैसेज। और आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अजय देवगन को फिल्म फूल और कांटे से बॉलीवुड में लॉन्च करने वाले कुकू कोहली थे। उन्होंने लिखा, अजय देवगन ने लिखा कि कुछ लोग इंसान की जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देते हैं और कुकू कोहली उनके लिए ऐसे ही खास लोगों में शामिल थे। और उन्होंने साथ में ये भी लिखा कि आपने मुझ पर जो भरोसा दिखाया उसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूँगा, आपकी बहुत याद आएगी कुकू जी, ओम शांति। कुकू कोहली के फिल्मी सफर की अगर बात करें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मशहूर फिल्म मेकर और एक्टर राज कपूर के साथ बतौर असिस्टेंट की थी। राज कपूर की जो फिल्में हम एकदम बहुचर्चित फिल्में हैं जिनका जिक्र हम करते हैं, बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम और प्रेम रोग में उन्होंने उनके साथ काम किया और फिल्म मेकिंग की जो बारीकियाँ हैं उनसे ही सीखी आपने। और इसके बाद सनी देओल और अमृता सिंह की फिल्म बेताब में सेकेंड यूनिट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। आगे चलकर बतौर निर्देशक आपने अपनी बहुत बड़ी पहचान बनाई। 1991 में कुकू कोहली ने फूल और कांटे से डायरेक्शन की शुरुआत की और उसके बाद उन्होंने और भी कई फिल्मों का निर्देशन किया, कोहराम, सुहाग, हकीकत, जुल्मी, अनाड़ी नंबर वन, ये दिल आशिकाना और वो तेरा नाम था जैसी फिल्मों पर आपने काम किया। और इस फिल्म का जब जिक्र हुआ है तो एक गीत जरूर मैं आपको सुनवाना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले हम चले जाएंगे ये दिल आशिकाना, ये जो गाना है ये सुनने से पहले मैं आपको लेकर जाऊंगी हमारी उस विशेष प्रस्तुति की तरफ जिसे हम रोजाना तीन का तड़का के इस कार्यक्रम के मध्य में ही सुना करते हैं। और क्या है वो हमारी खास पेशकश आप जानना चाहते हैं, तो चलिए सुनते हैं।
1: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति, सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति।
0: तो प्यारे श्रोताओं, आज परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये जो कार्यक्रम है इसकी लॉन्च की तारीख 25 दिसंबर 2000 है और तत्कालीन प्रधानमंत्री जो रहे अटल बिहारी वाजपेयी उनके द्वारा ये जो योजना है ये शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मौसमों में चलने वाली सड़कों का निर्माण करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य 500 या उससे अधिक पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में 250 से या उससे अधिक की आबादी वाले गांवों को 12-मासी सड़क संपर्क प्रदान करना है जो पहले सड़क से नहीं जुड़े थे। इस कार्यक्रम की इकाई जो है ना वो राजस्व गांव या पंचायत नहीं बल्कि बसावट है। बसावट का अर्थ किसी क्षेत्र में रहने वाली आबादी का ऐसा समूह जो कि समय के साथ बदलता नहीं है। बसावट को इंगित करने के लिए आमतौर पर देशम, धानी, टोला, माजरा, हैमलेट इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। 12-मासी सड़क वह सड़क है जो वर्ष के सभी मौसमों में उपयोग करने लायक हो। इसका अर्थ है कि सड़क की सतह से प्रभावी जल निकासी होनी चाहिए। आम जनता के लाभ को ध्यान में रखते हुए ये जो योजना है इसके तहत सड़कों को बनाने के लिए भूमि आमतौर पर गांव वाले या पंचायत जो है वो स्वैच्छिक दान करते हैं और बिना किसी लागत के ये जो जमीन है ये उपलब्ध करवाई जाती है। सरकार ने इस योजना को शुरू किया ताकि विशेष रूप से दुर्गम जगहों पर बसे गांव में रहने वाले लोगों को शहरों तक आने जाने के लिए अच्छी सड़कें मिल सके। केंद्र और राज्यों के 60 और 40 और हिमालयी राज्यों के 90-10 के लागत अनुपात ने साबित किया कि जब नीतियां और इरादे नेक हों तो विकास हर चौखट तक पहुंचता है। निर्माण के साथ 5 वर्षों के रखरखाव की जिम्मेदारी और मेरी सड़क ऐप जैसे डिजिटल माध्यमों ने पारदर्शिता और जवाबदेही की नई मिसाल कायम की है। गांवों में अच्छी सड़कें बनने से लोगों का शहरों तक आना जाना आसान हो गया है। अब गाड़ी में बैठकर गाते गुनगुनाते शहर तक पहुंचा जा सकता है। माल और वाहनों की आवाजाही आसान होने से विकास के कितने रास्ते खुल रहे हैं। सड़कें बनने से गांव में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं और गांव से लोग आसानी से शहर की ओर काम पर जाने लगे हैं। अच्छी सड़कें होने से लोगों को अस्पतालों

0: स्कूलों तक पहुंचना पहले से आसान होने लगा है। आज जब एक बीमार बुजुर्ग को वक्त पर अस्पताल पहुंचाया जाता है, जब एक किसान अपनी फसल को मंडी तक बिना किसी रुकावट के पहुंचा पाता है और जब गांव की बेटियां बेझिझक पक्की सड़कों से होते हुए स्कूल कॉलेज जाती हैं, तब समझ आता है कि ये योजना सिर्फ सड़कें नहीं बल्कि उम्मीदों की नई राह बना रही है। तो प्यारे श्रोताओं, ये थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में थोड़ी सी जानकारी। वेबसाइट www.omms.nic.in और www.pmgsy.nic.in पर कार्यक्रम के संबंध में जानकारी और प्रत्येक निर्माण कार्य के बारे में विवरण जो है वो उपलब्ध है।
1: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।

एक जरूरी सूचना। मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्कल की अध्यक्षता में दिनांक 22/9/2026 को पूर्वान्ह 11 बजे मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल, योगायोग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 में गूगल मीट के माध्यम से 137वीं यानी 137th डाक और पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की डाक सेवाओं और डाक घरों से पेंशन लेने वाले पेंशन भोगियों के पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यौरे का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री SC दास, सहायक निदेशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल, P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 के नाम से भेजी जाए और यह डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in, adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 31/8/2026 तक या उससे पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट के जरिए डाक एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हों। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332212050, 0332212061, 0332212050 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक पेंशन अदालत के आवेदनों ईमेल पर डाक अदालत पेंशन अदालत शब्द अवश्य लिखा होना चाहिए। और एक विशेष बात इसमें यह है कि डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विविध मामलों, विधिक मामलों और नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। देखते ही देखते हमारा जो समय समाप्ति के कगार पर है, तीन का तड़का में चलते चलते बस यही बताना चाहूंगी कि यश की फिल्म टॉक्सिक ने पहले दिन भारत में 101 करोड़ की नेट कमाई की है, जिसमें हिंदी वर्जन ने 55 करोड़ का योगदान दिया है। और उधर सोनू सूद ने नेपाल चीन बॉर्डर इलाके में बुधवार सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ से जो तबाही मची है, उस मुश्किल वक्त में ये कहा है कि नेपाल आप अकेले नहीं है, हम भोजन, शेल्टर और पुनर्निर्माण में आपकी मदद करने के लिए पूरी शक्ति लेकर आ रहे हैं। और एक बार फिर इस पोस्ट के साथ ही लोगों ने फिर से उन्हें एक रियल हीरो का एक दर्जा दिया है। और सच में ऐसी आपदाओं में हमेशा से सोनू सूद ने आगे कदम रखा है और लोगों की मदद के लिए उन्होंने जितनी भी संभव हो उतनी सहायता की है, इसके लिए उनको कूडोस। और अब समय हो चला है कि मैं आपको कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनवाऊं। आप सबके लिए अरिजीत सिंह की आवाज सुनते रहें। इस गाने के ठीक बाद हम चले जाएंगे हमारी खास प्रस्तुति विज्ञापन दाता द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की तरफ।

0: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं श्रोताओं आज का सुविचार। इसे भेजने वाले हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला जी। लिखते हैं,
0: सत्य की राह भले कठिन हो लेकिन मंजिल हमेशा उजाले तक पहुंचाती है। झूठ कुछ पल चमक सकता है पर सत्य सदा सम्मान और विश्वास दिलाता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके द्वारा भेजे गए संदेश। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत और गुरकीरत राहुल के साथ गुरशब्द सिंह राहुल जी का।
0: तहसील ठियोग जिला शिमला से सूरज चौहान जी।
1: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने लिखा है, आज उमंग कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के जीवन, संघर्ष और राष्ट्रभक्ति से जुड़ी अत्यंत रोचक, प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने का अवसर मिला।
0: ये भी जानिए, मैं ये जानकर गर्व हुआ कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे ओजस्वी पुकार और जय हिंद जैसे अमर राष्ट्रनाद को जन जन तक पहुंचाने में नेताजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
1: उनका अदम्य साहस, अटूट देश प्रेम और बलिदान आज भी प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए अजीत जी और विमलेश जी और कार्यक्रम की पूरी टीम का हार्दिक धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। लिखा है, आपकी संपूर्ण टीम को बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने वाले कार्यक्रम के निर्माण हेतु हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के देश सेवा सर्वोपरि के सिद्धांत को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से श्रेष्ठ साबित करने वाला प्रेरक प्रसंग सुनकर मन गदगद होकर उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। आपको हार्दिक आभार और धन्यवाद।
0: आपको भी हार्दिक आभार संदेश भेजने के लिए। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। जैसा हर बार हम निवेदन करते हैं इस बार भी करेंगे कि जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं इस सप्ताह पिछले दो दिनों में हमने बात की भारत के दो अनोखे गांवों की। आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं एक और रोचक गांव की जानकारी। तो विमलेश जी आज अपनी ज्ञान यात्रा में हम कहाँ चल रहे हैं?
0: अजीत जी चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्य की ओर और चलते हैं एक गांव में जहां मानो बारिश रुकना ही भूल गई हो।
1: क्या बात है, जहां मानो बारिश रुकना ही भूल गई हो। अच्छा ऐसा भी कोई गांव है? कोई मजाक कर रहे हैं आप?
0: नहीं नहीं अजीत जी बिल्कुल सच। ये वो जगह है जहां के छाते भी कहते हैं वर्षा रानी कभी तो रुको।
1: क्या बात है, वर्षा रानी कभी तो रुको।
0: जी चलिए श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछते हूँ, बताइए ये कौन सी जगह है?
1: अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर की वर्षा भी रुकना भूल जाती है तो मुझे याद आ गया, वो जगह है मौसिन राम, ये मेघालय राज्य में है।
0: बिल्कुल सही जवाब। अच्छा तो जरा श्रोताओं को ये तो बता दें कि कितनी बारिश होती है वहाँ।
1: विमलेश जी यदि यूं ही बता दूं ना कि वहाँ की औसत सालाना बारिश कितनी होती है तो जानकारी में वो मजा नहीं आएगा
0: जी।
1: तो पहले मैं बताता हूँ कि भारत के कुछ और शहरों में बारिश कितनी होती है
0: जी।
1: जैसे दिल्ली की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 650 मिलीलीटर,
0: चेन्नई की लगभग 1400 मिलीमीटर और मुंबई की लगभग 2200 मिलीमीटर,
1: और यदि कोलकाता की बात करें तो ये लगभग 1600 मिलीमीटर है। तो अब सुनिए कि मौसिन राम मेघालय की औसत सालाना वर्षा कितनी है
0: जी।
1: तो यहाँ की सालाना औसत वर्षा है 11900 से लेकर 12000 मिलीमीटर तक, यानी यदि इसे मीटर में मापें तो औसत सालाना बारिश लगभग 12 मीटर के आसपास है।
0: 12 मीटर यानी अगर इतना बारिश का पानी जमा हो जाए तो 4 मंजिला मकान की ऊंचाई के बराबर होगा
1: जी। जी तो विमलेश जी अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि चेन्नई, मुंबई और अन्य शहरों की अपेक्षा यहाँ बारिश कितनी होती है, क्योंकि यहाँ पर 1200 मिलीमीटर की बात हम कर रहे हैं। तो आपने ठीक कहा, 12 मीटर यानी इतना पानी यदि जमा हो जाए तो 4 मंजिला मकान की ऊंचाई के बराबर होगा। हालांकि इतना पानी वहाँ जमीन पर लगातार जमा नहीं रहता, लेकिन जरा सोचिए विमलेश जी, आसमान से हर साल करीब 12 मीटर यानी 39 कह लीजिए या तो 40 फीट पानी बरसता है।
0: आपने बड़ी अच्छी तरह से इसकी तुलना की है, अब समझ में आया कि कितना पानी वहाँ बरसता है। तो अब एक और मजेदार सवाल, वहाँ के लोग सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते होंगे, चाय या मौसम का हाल?
1: शायद दोनों ही, लेकिन उनके लिए बारिश कोई खास घटना नहीं है, ये तो उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा है
0: जी। अब कुछ और मजेदार बातें जानते हैं अजीत जी।

0: हाँ, अनाज का भंडारण और कपड़ों को सुखाना तो बहुत बड़ी समस्या होगी, वहाँ ये काम कैसे होते हैं?
1: विमलेश जी, बड़ा अच्छा और उपयोगी प्रश्न आपने पूछा। वहाँ कपड़ों को सुखाने के लिए पारंपरिक रूप से टिन या लोहे की पेटियाँ होती
0: जी,
1: जिन्हें आग जलाकर गर्म रखा जाता है। भीगे कपड़े उन्हीं गर्म पेटियों में सूखते रहते हैं।
0: और अनाज का भंडारण वे धान के पुरालों या पुआलों में रखकर करते होंगे, ये उनके पारंपरिक तरीके हैं
1: जी।
0: तो जी जी, अब बात करते हैं उनके घरों की। घरों को भी भारी बारिश को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। उस इलाके में बहुत से ऐसे घर मिल जाएंगे जो बांस के खम्भों पर टिके हुए हैं। वहाँ रास्तों पर पानी, फिसलन और कभी कभी भूस्खलन भी बहुत बड़ी चुनौती है। बता दें कि खासी जनजाति का मुख्य भोजन चावल है और जादू यहाँ का पारंपरिक व्यंजन है।
1: इमलेश जी, मन में एक सवाल और आता है कि वहाँ बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे?
0: अजीत जी, ऐसा नहीं है कि वहाँ बारिश के कारण स्कूल बंद रहते हैं। भूस्खलन और तेज तूफानों के समय विशेष सावधानी बरती जाती है, लेकिन वहाँ बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाते हैं। दिल्ली और NCER शहरों में स्कूल जाते समय बच्चे सोचते हैं आज बारिश होगी तो क्या होगा, जबकि
1: मौसिन राम में बच्चे सोचते होंगे आज कितनी बारिश होगी। विमलेश, इतनी बारिश के बाद वहाँ की प्रकृति कैसी होगी?
0: अद्भुत, चारों तरफ हरियाली, पहाड़, झरने, धुंध और गुफाएं, मानो प्रकृति ने खुद को हरे रंग में रंग दिया हो। एक बात और, वहाँ लगातार होने वाली बारिश के कारण सामान्य पुल बहुत अधिक नहीं टिकते, इसलिए उस क्षेत्र और मेघालय राज्य में पेड़ों की जड़ों से भी पुल बनाए जाते हैं।
1: जी हाँ, इन्हें लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है। यहाँ पेड़ों की जीवित जड़ों को वर्षों तक दिशा देकर मजबूत पुल का रूप दिया जाता है। ये पुल कभी नहीं टूटते
0: जी।
1: यानी विमलेश जी, सब कुछ सुनकर ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग प्रकृति को हराने की कोशिश नहीं करते।
0: जी बिल्कुल सही कहा अजीत जी, वे प्रकृति के साथ जीना सीखते हैं। तो अजीत जी, मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स का ये गांव मौसिन राम हमें क्या सिखाता है?
1: विमलेश जी, ये गांव हमें ये सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, मनुष्य उनके साथ तालमेल बनाकर जीवन को सुंदर बना सकता है।
0: जी अजीत जी, मेरे मन में एक खूबसूरत वाक्य आ रहा है।
1: भला वो क्या?
0: बारिश कितनी भी हो, जीवन में उमंग की धूप बनी रहनी चाहिए।
1: वाह क्या बात है, बारिश कितनी भी हो,
0: जीवन में उमंग की धूप बनी रहनी चाहिए।
1: जी जी, ये बात है। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी भारत के एक और गांव मौसिन राम के बारे में। ये गांव तो है ही, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा क्षेत्र भी। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, हमारा प्रश्न है, मौसिन राम और मेघालय खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मौसिन राम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है?
1: श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
0: और यदि आपको NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए।
1: जी, पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT बुक्स PDF टाइप करें।
0: और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना है या ऑडियो बुक्स तो YouTube पर जाइए और टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल, विकल्प आपको मनचाही पाठ्य पुस्तकों पर ले जाएंगे।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सबसे पहला हमारा आज का कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में विस्तार से बताया गया है और विशेषकर इसके बनने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई है।
1: धरती का हरियाला उत्सव।
2: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
3: नाना जी, नाना जी।
4: अरे ऋतिक, रश्मि भाई, आओ आओ आओ, कैसी रही चौपाल?
3: ठीक रही नाना जी, आज ना किसी ने गीत गाया और ना ही कोई नाटक दिखाया गया। आज तो बस यही बात हो रही थी कि
5: बहुत गर्मी पड़ रही है,
3: कोई कह

0: रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है।
1: नाना जी,
0: इतना तो मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
2: हाँ हाँ बताइए ना। माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
3: बेटा मैं भूगोल पढ़ाता था।
0: ये लो, नानी जी भी आ गई।
4: अरे यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
3: अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
4: हाँ वो तो है।
2: नानी, हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
4: अच्छा तो ये बात है। तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
3: अच्छा चलो भाई चलो, मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, मानसून के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
2: कहाँ से आया है
3: भाई? शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
2: अरबी भाषा के मौसम शब्द से।
3: बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई। मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
0: पूरी दुनिया में नहीं होता तो फिर?
3: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
2: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
3: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है। ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
2: नाना जी, मानसूनी पवन कैसे बनती है?
3: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है, वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
2: अच्छा नाना जी।
3: चूँकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
2: अच्छा।
3: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे भारी वर्षा होती है।
2: अब समझ में आया। नाना जी, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
3: देखो भाई, यदि भारत की बात करें तो मानसून यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती हैं, कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
4: और बच्चों, भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है।
3: हाँ।
4: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की लगभग 60-70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
3: बिल्कुल।
4: और हाँ, हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
2: अच्छा।
4: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
2: अच्छी अर्थव्यवस्था।
4: हाँ।
3: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है, हमारी कला, साहित्य, त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
0: वो कैसे?
4: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर चित्रण है। अगर आधुनिक कविताएं कहें तो फिर सुमित्रानंदन पंत, निराला और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।

0: ही इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ, यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मिया मल्हार, गौड़ मल्हार और राग देश विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए
1: जी नाना जी। और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
2: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम तुलसी गौड़ा जंगल की इंसाइक्लोपीडिया।
4: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण जनजातीय कार्यकर्त्री तुलसी गौड़ा के जीवन और पर्यावरण संरक्षण में उनकी अहम भूमिका के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।
5: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहनी
6: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती।
7: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा।
5: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
8: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है।
0: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
9: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण।
0: ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। देश भर में प्रसन्नता की लहर।
10: नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता के मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय

0: पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों मैं करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
3: अच्छा,
2: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
3: अरे, ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
2: बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
0: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
2: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
0: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
1: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
0: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है, वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
4: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
2: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
4: अच्छा।
2: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
4: अच्छा।
2: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
4: अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
2: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है। ठीक है ना?
4: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत धन्यवाद।
0: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
1: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
5: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम तुलसी गौड़ा जंगल की इंसाइक्लोपीडिया। हमें आशा है कि हमारे आज के कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आए होंगे। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम
6: चेतना,
5: जगबंधु
6: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

0: Yes, খোদা তো সবটাই জানে, কিন্তু মহুয়াও জানে. And you are listening to
1: শুনছো ক্যাফে কলকাতা, ক্যাফে কলকাতা 107 FM রেইনবোতে. ক্যাফে কলকাতা, ক্যাফে কলকাতা.
0: अंधेरों में छुपा हूँ और एक ख्वाब आज उसके चेहरा सामने है और उसके सामने खुदा है, वो जो अंधेरों में जीते हैं. यस, हैवान फिल्मेर किंतु ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च करे गेछे एवं सेखाने जारा दुजन रयेछेन तारा होच्छे नाना दादान अक्षय कुमार एंड सैफ अली खान. एदेर बहुदिन बादे आफ्टर मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी एदेर दुजन के देखा जाबे, सुतरां आमरा भीषण एक्साइटेड. यस, फिल्मटा केमन हय तोमार জন্য থাকছে এই ফিল্ম থেকে গান ফ্রম দ্য 90s. হোয়াট আ সং!

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

दुनिया बनाने वाले ने सारे जीवों को इंसान से अलग बनाया है और जो इमोशंस इंसान महसूस कर पाता है और बयां भी कर देता है वो कहाँ दूसरे प्राणी कर पाते हैं। हम कहकर भाव भंगिमाओं से तो कभी गुस्सा होकर तो कभी हंसकर कभी रोकर कभी गले लगकर अपनी भावनाएं अपनी इमोशंस सब हम बस निकाल के एक्सप्रेस कर देते हैं। लेकिन ये जो एक्सप्रेशंस हैं एक दूसरे से बहुत अलग हैं बहुत जुदा हैं। इतने सारे रंग हैं ना हमारे इन एक्सप्रेशंस के और इन्हें जताने के लिए हमारे पास अलग अलग रिश्ते भी हैं। ये रिश्ते ही ना हमारे जीवन के सफ़र को खूबसूरत बनाते हैं। रक्षाबंधन के पूनम का चांद जब आसमान में चमक रहा है ऐसे में आज बात करते हैं फिल्मों में दिखाए गए बेहद हसीन रिश्तों की। नज़ारा फिल्मों का मैं आज ऐसे सीन्स की बात करेंगी जिनमें तरह तरह के रिश्तों ने अपनी खुशबू बिखेरी। चैनिका है आपके साथ, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। एफएम रेनबो कोलकाता पर शुरू हो चुका है छायालोक। शाम 8 बजे तक या कहें कि रात 8 बजे तक मैं रहूंगी आपके साथ। ये जो 8 का जो समय है ना ये एक ऐसा जंक्चर है ना, तो ये शाम है ना ये रात है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत से कहते हैं ना कि एक समय का एक वो पड़ाव है जब आप काम से लौट चुके हैं, शायद घर पहुंच चुके हैं और उस वक्त आपका जो परिवार है वो आपके साथ है और वो जो उष्मा है, जो प्यार का एक जो घेरा है, वो सच में ये जो रिश्ते हैं यही तो हमें देते हैं। ये जो कोकून है ये कहीं और नहीं मिल सकता। तो आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं बात करूंगी, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ ऐसी फिल्मों की बात करेंगे, कुछ ऐसे सीन्स की बात करेंगे जहां तरह तरह के रिश्तों ने अपनी खुशबू बिखेरी। सबसे पहले 1975 की फिल्म चुपके चुपके की बात मैं करना चाहूंगी और इतने सारे सीन्स हैं इस फिल्म में। वो वाला सीन मेरा बहुत बहुत पसंदीदा सीन है जहाँ एकदम शुद्ध हिंदी खालिस हिंदी में संवाद लिखे हैं, जिसने लिखे हैं डायलॉग्स और धर्मेंद्र ने क्या खूब निभाया है उस सीन को। जो शक्की जीजा है राघव प्रसाद, ओम प्रकाश ने जो किरदार निभाया था, शर्मिला की जीजा जी हैं वो, और उनको जानबूझकर उलझाने के लिए बहुत ही अतिरंजित तरीके से धर्मेंद्र जो हैं वो हिंदी बोलते हैं और एकदम फॉर्मल हिंदी शुद्ध हिंदी बोलते हैं। और वो सीन है, हर सीन में ही है, जब जब दोनों की कम्युनिकेशन होती है, जब जब दोनों साथ में आते हैं तो वही होता है। मतलब हर सीन में ही हर दृश्य में ही वो इतनी शुद्ध हिंदी बोलता है कि वो जीजा जो हैं जो कहते हैं कि मैं हिंदी बोलते वक्त अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग उचित नहीं समझता, वो भी मतलब एकदम से झुंझला जाते हैं। तो ये दृश्य हैं बहुत सारे, लेकिन वो पहला जो इंट्रो जब वाला जो सीन है जब एकदम धर्मेंद्र से मिलवाया जा रहा है जीजा जी को, वो सीन एकदम लाजवाब सीन है, लाजवाब दृश्य है मुझे कहना चाहिए। तो चलिए, जब चुपके चुपके का जिक्र हो आया, इतने मीठे रिश्तों का ताना बाना जो है वो बुना था ऋषिकेश मुखर्जी ने, ऐसे रिश्ते जो एक दूसरे के साथ प्यार की डोरी से बंधे हुए होते हैं। इसी फिल्म का एक गीत सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में। चुपके चुपके का ये गीत संगीतबद्ध किया था सचिन देव बर्मन ने और लिखा था इस गीत को आनंद बख्शी ने।

बात करेंगे 1975 की उस फिल्म के बारे में, जो एक ऐसी फिल्म है जो शुरुआत से लेकर, हिंदी सिनेमा के इतिहास की एकदम शुरुआत से लेकर अब तक फिर से नहीं बनाई गई या फिर से नहीं बन पाएगी। ये जो थीम म्यूजिक है ये बता रहा है कि मैं शोले की बात कर रही हूँ। और 1975 में रिलीज्ड शोले में जिस तरह की केमिस्ट्री दो जो हीरो थे फिल्म के उनके बीच में दिखाई गई वो काबिले तारीफ थी। कहते ना कि एक दूसरे के पूरक होना, तो यहाँ दोस्ती का जो रिश्ता है उसकी हम बात करेंगे। तो जय और वीरू के रूप में हमने देखा कि इससे अच्छा, इससे खूबसूरत दोस्ताना तो शायद हो ही नहीं सकता। वीरू एकदम हैप्पी गो लकी, बहुत खुश मिजाज, हमेशा जैसे चहकते हुए, हमेशा फड़कते हुए और सबके साथ घुल मिलकर एकदम से, जैसे कहते हैं ना कि कहीं पर भी आप जाएं तो फिर आप बताएं लोगों को कि हम आ गए, हम हाजिर हैं। ऐसी एक पर्सनालिटी, ऐसा व्यक्तित्व, खासकर बसंती को इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश। और उधर जय हमेशा खामोश, जब फीलिंग्स आपकी आ रही हैं किसी के तरफ, किसी के प्रति, तब भी आप खामोश, केवल आपकी आंखें बोले, बात आप बिल्कुल ना करें। लेकिन जब वीरू का उत्साह हद से अधिक बढ़ जाए तो उस पर लगाम खींचने के लिए जय अपनी खामोशी तोड़े। तो ये जो एक दूसरे के पूरक वाला जो रिश्ता था, ये पूरी फिल्म में इतनी खूबसूरती से दिखाया गया है, बयां किया गया है। सच में ऐसी दोस्ती, फिल्मी दोस्ती हमने बहुत कम देखी है। और सीन्स की अगर बात करें तो क्लाइमैक्स बहुत खूबसूरत, और वहाँ पर जब पता चलता है वीरू को कि जो सिक्का है उसमें तो बस केवल हेड ही हेड है, एक ही मतलब सिक्का है, उसका एक ही पहलू है, सिक्के के दो पहलू तो हैं ही नहीं, तो तब लगता है कि पूरी फिल्म में जो कुछ हुआ उसके पीछे एक पर्पस था, और वो पर्पस जो था वो जय का पर्पस था, जय का उद्देश्य था। हर हर मतलब वो फिल्म आगे ही ना बढ़ती अगर इस तरह से टॉस करके बार बार जय अगर ना जीतता, तो वो पूरी फिल्म को, वो आखिरी जो दृश्य है वो एक अलग पर्सपेक्टिव देता है। तो और भी बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं, ये दृश्य भी मुझे, वो सिक्का जो है उसकी सच्चाई पता लगने वाली जो बात है वो मुझे बहुत छूती है। और आज हम केवल एक ही सीन की एक फिल्म से बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि शोले के बारे में मैं और अगर बहुत अधिक कुछ यहाँ बोलने जाऊँ तो मैं बह जाऊँ भावनाओं में और ये कार्यक्रम ही शायद ख़त्म हो जाए, इसलिए इसको यहीं विराम देते हैं। दूसरे दृश्यों के बारे में कभी और ज़रूर बात करेंगे। फिलहाल तो गाना सुनते हैं, वो सुपरहिट वाला गाना।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक।
1: नजारा फिल्मों का।
2: जारी है छायालोक नजारा फिल्मों का। चैनिका है हाजिर आप सबके साथ। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में समय 7:26 और 36 सेकंड्स फिलहाल। और हम आज बात कर रहे हैं बड़ी ही मीठी मीठी प्यारी प्यारी सी रिश्तों की मिठास हिंदी फिल्मों के साथ। और कुछ ऐसी फिल्मों की हम बात कर रहे हैं और उन फिल्मों के कुछ ऐसे सीन्स की हम बात कर रहे हैं जहाँ तरह तरह के रिश्तों ने अपनी खुशबू बिखेरी। चुपके चुपके की हमने बात की, कैसे एक जीजा जो हैं वो कितने प्रोटेक्टिव हैं अपनी फैमिली के बारे में, अपनी साली साहिबा का ख्याल रखते हैं, चाहते हैं कि वो खुश रहें, और किस तरह से उनको मतलब उनकी चुटकी लेती हैं उनकी साली साहिबा। और एक एक वॉर्म्थ है रिश्तों का जो ताना बाना है वो बड़ी ही खूबसूरत तरीके से फिल्म को आगे ले जाता है। उसके बाद शोले की बात की जहाँ दोस्ती का रिश्ता हमने देखा, ऐसी दोस्ती जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में विरल है। हमने जय और वीरू जैसी जोड़ी और किसी फिल्म में नहीं देखी है। और अब मैं बात करूँगी 1983 में रिलीज्ड फिल्म सदमा की। एक ऐसी फिल्म, ये भी एक ऐसी फिल्म जो शायद फिर कभी ना बनी हो। और कमल हसन तो खैर उनकी अभिनय की तो हमेशा चर्चे होते हैं, किसी भी फिल्म में वो काम कर लें तो उस फिल्म में उनके अभिनय की बात तो होती ही है। लेकिन श्रीदेवी उनके बारे में मैं क्या कहूँ, इतनी खूबसूरत अदाकारी, वो जो ट्रांजिशन है, जो क्लाइमैक्स का जो सीन है, पूरी फिल्म में हमने जिस तरीके से उनको देखा है और क्लाइमैक्स में जाकर वो जिस तरह से एकदम से अलग एक अवतार, लगता है कि क्या ये वही है जिनको पूरी फिल्म में जिस तरह से हमने देखा वही है। मतलब नेह लता की याददाश्त वापस आ जाती है और वो सुमो को पहचानने से इनकार कर देती है और सुमो से याद दिलाने की जी तोड़ कोशिश करता है, लेकिन वो समझती कि कोई सिरफिरा अजनबी है और उसको वैसा ही मान कर वो इग्नोर करती है। उसको पता भी नहीं कि किस तरह से कितनी अधिक अटैचमेंट उसके साथ बन गई थी, और अगर सोमू ना होता तो वो कहाँ होती, किस हाल में होती, ये कुछ भी उसे याद नहीं। तो ये वो जो सीन है रेलवे स्टेशन वाला, वो आपके दिल को झिझोड़ के रख देता है, झकझोर के रख देता है। तो यहाँ कौन सा रिश्ता है, यहाँ भी प्यार का ही रिश्ता है जो दो अजनबियों को जो आपस में जोड़ता है। एक ऐसी डोर जिसको आप परिभाषित नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी दिल का कनेक्ट है ये। बहुत ही खूबसूरत, एक अलग तरीके से जिसे बयां किया गया हो। रिश्ते कई तरह के होते हैं, उनका कभी कभी नाम होता है और कभी कभी नाम नहीं होता। तो ऐसी ही एक फिल्म थी सदमा। और ये लास्ट सीन देखकर बहुत लोगों को सच में सदमा लगा था। चलिए सुनते हैं फिल्म का ये गाना।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: नजारा फिल्मों का।
2: नज़ारा फिल्मों का में आज हम बातें कर रहे हैं रिश्तों की मिठास की। हिंदी फिल्मों के साथ जिस तरह हमने इस मिठास को चखा है, फिल्मों में हमने देखा है, विटनेस किया है, ऐसी कुछ एक फिल्मों की बात हम कर रहे हैं जहां हमने देखे हैं अलग अलग तरीके के रिश्तों ने किस तरह से अपने बीच के प्यार को, मनमुटाव को, दोस्ती को जिया है, महसूस किया है। हमने भी इन रिश्तों के साथ अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ पाया है। ऐसी ही एक फिल्म याद आ रही है, 80 के दशक की फिल्म थी ये भी, शक्ति है इस फिल्म का नाम। और कितने लाजवाब सीन्स, एक से बढ़कर एक सीन्स इस फिल्म में थे। और जिस तरह के पावर हाउस परफॉर्मर्स अगर हों, जहां दिलीप कुमार है, अमिताभ बच्चन, राखी गुलजार, स्मिता पाटिल, आप किसे छोड़कर किसे देखेंगे। मतलब हर किसी की स्क्रीन प्रेजेंस इतनी तगड़ी कि एक फ्रेम में जब आ जाए साथ में तो आप बस कंफ्यूज हो जाएं कि किसको देखना है, किसकी तरफ देखें, किसके संवाद ज्यादा ध्यान से सुने। और यहाँ पर भी जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं, दृश्य हैं। एक क्योंकि यहाँ पर फादर और सन के रिलेशनशिप को बेस बनाकर ये फिल्म जो है वो आगे बढ़ती है, जो कहानी है वो पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। तो ऐसा ही एक सीन मैंने यहाँ चुना है, बहुत वाइटल सीन है। आप भी शायद मेरे साथ अग्री करेंगे कि आपका भी ये फेवरेट होगा। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सराहा गया ये दृश्य था। हालांकि एक और दृश्य की बात मैं करूँगी, जहाँ जब पता चलता है दिलीप कुमार को कि स्मिता पाटिल उनकी बहू हैं, तो उनका जो टोन है, वो बात कर रहे हैं, इंटरोगेट कर रहे हैं एज इफ, और वो तुरंत उनका जो टोन है वो बदल जाता है, जैसे ही उनको पता चलता है कि वो जो है वो उनके बेटे की संगिनी है। और वो फिर एक अलग तरीके का, एक कहते ना कि एक वो आप अभिभावक के तौर पर आप जिस तरह की केयर करते हो किसी के प्रति, वो वाला जो भाव है किस तरह से वो कर लेते थे, मुझे लगता है एकदम कॉन्ट्रोडिक्टरी दो एक्सप्रेशंस, दो भाव वहाँ पर उन्होंने बड़ा ही एकदम आराम से, बड़े ही अनायास तरीके से उन्होंने वो दर्शाया है दिलीप कुमार ने। लेकिन जिस सीन की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि बेटा और पिता दोनों की यहाँ पर, अगर मैंने कहा कि क्योंकि ये फिल्म की कहानी जो है वो पिता पुत्र के रिश्ते के इर्द गिर्द है, तो एयरपोर्ट वाला जो क्लाइमैक्स

सीन है, इसको बहुत अधिक सराहना मिली इस सीन को, जहां पर डीसीपी अश्विनी कुमार अपने परिवार के ऊपर अपने कर्तव्य को चुनते हैं। दिलीप कुमार ने किरदार निभाया है और हवाई अड्डे पर अपने ही बेटे को, जो कि अब रिबेल कर चुका है, पहले से ही वो रिबेल कर चुका है, लेकिन अब वो किसी भी हालत में वो रुकेगा नहीं, मानेगा नहीं उनकी बात, विजय उसका पीछा करते हैं और अपने बेटे, विद्रोही बेटे विजय को अंततः वो गोली मार देते हैं। और अपने पिता के प्यार को आखिरकार बेटा समझता है, उसी दृश्य में वो समझता है। समझने के बाद बड़ी ही शांति से, बड़े सुकून के साथ वो अपने पिता की बाहों में दम तोड़ देता है। बहुत फेमस सीन है ये फिल्म का। और आज क्योंकि हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, तो रिश्ते हमेशा जो है वो मीठे नहीं होते, उनकी मिठास कभी कभी कड़वाहट में भी है। यानी रिश्ते का एक संपूर्ण अगर आप रूप देखें किसी भी रिश्ते का, तो वहाँ केवल और केवल मीठापन नहीं है, वहाँ पर खटास है, कड़वापन है, नमक है कभी कभी ज़्यादा, जो आंसुओं से झर के आ जाता है चेहरे पर, आपकी ज़बान पर। तो अलग अलग किस्म के फ्लेवर्स होते हैं एक रिश्ते में। तो ये रिश्ता भी मुझे लगा कि आज ज़रूर शामिल करना चाहिए। कितना इंटेंस एक रिश्ता। बेटे को पिता से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, अलग तरीके की एक्सपेक्टेशंस थी, और वो समझने में उसको भूल हुई और पिता कभी समझा ही नहीं सके कि वो बेटे के लिए क्या फील करते थे। शक्ति फिल्म का एक गीत चलिए आपको सुनवाती हूँ।

0: नजारा फिल्मों का।
1: सुन रहे हैं आप नजारा फिल्मों का, छाया लुक लेकर आई है आज चैनिका। और अब बात करेंगे कैसी फिल्म की जहां पर हमने देखा बेटी और पिता के एक बेहद खूबसूरत रिश्ते को, जहां पिता ने बहुत भरोसा किया बेटी पर और बेटी ने हमेशा पिता का मान रखा। एक ओल्ड एज किस्म का रिश्ता, मतलब पुराने जमाने के दिनों का एक दिखाया गया है घर का माहौल, जहां पर पिता जब आते हैं तो घर का जो सिनारी हो वह बदल जाता है। बच्चे पढ़ने बैठ जाते हैं, माँ का कहा मानते हैं, माँ जल्दी जल्दी किचन का काम कंप्लीट करती है और उससे पहले कुछ और ही घर में चलता है। तो इस तरह का एक माहौल, एक ऐसा घर जो प्रवासी है, जो देश में नहीं रहता, रहता है बाहर विदेश में, लंदन में, और वहाँ पर बहुत ही देसी तरीके से बच्चों की परवरिश कर रहे हैं माता पिता। उनकी दो बेटियाँ हैं और फिल्म के बारे में, जिस फिल्म की मैं बात कर रही हूँ उसके बारे में थोड़ा थोड़ा अंदाज़ आपको आ रहा होगा, जहाँ एक पिता है, बहुत स्ट्रिक्ट पिता है, उसूलों वाले पिता है, और उनकी जो बड़ी बेटी है वो पिता की गोद में बैठ कर एक दिन कहती है कि मुझे दोस्तों के साथ यूरोप घूमने जाना है, और वो जानती है कि पिता शायद मना कर दें, तो मूड समझ के वो ये बात जो है वो रखती है। और पिता को अपनी बेटी पर बड़ा भरोसा है और बड़ी उम्मीदें भी हैं, वो जानते हैं कि उनकी बेटी कभी उनका कहा नहीं टालेगी, वो जैसा कहेंगे, जिस रास्ते पर चलने के लिए कहेंगे वो वही करेगी। और बेटी है वो भी अपने पिता का मान रखती है, सम्मान करती है, और इस तरह से जो रिश्ता है इनका आगे बढ़ता है, सब कुछ ठीक चलता है, जब तक सिमरन की ज़िंदगी में राज नहीं आ जाता। लेकिन ये जो सीन है जहाँ पर वो कह रही है कि मेरी ज़िंदगी के कुछ दिन मुझे आप दे दीजिए, आप तो मुझे इंडिया ले जा रहे हैं, मेरी शादी हो जाएगी, लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ ये जो दिन है अपने जीवन के मैं बिताऊंगी, वो मैं सारी ज़िंदगी याद रखूंगी। बड़ा ही खूबसूरती से फिल्माया गया ये एक सीन, और इस दृश्य को याद करते हुए ये गाना मैं आपको सुनवाऊं, बहुत ही खूबसूरत सा। सारे गाने अच्छे थे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के, ये वाला सुनते हैं।

और अब बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जो दो दशक से भी ज्यादा समय बाद रिलीज हुई। 1995 की फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और 2019 में रिलीज हुई थी फिल्म छिछोरे। छिछोरे भी आज की इस मेरी लिस्ट में शामिल है क्योंकि यहाँ पर जो रिश्ता दिखाया गया है दोस्तों के बीच एक बड़ा ही अद्भुत सा रिश्ता है जो बीच में कॉलेज के बाद किसी भी तरीके से संपर्क में न रहें लेकिन जब क्राइसिस हो किसी की लाइफ में तो सारे के सारे आ जाएं और सब मिलकर उस क्राइसिस का मुकाबला करें। और दोस्तों का ये जो समूह हो इस फिल्म में हमने देखा एक हिलेरियस कहानी लेकिन कितना बड़ा संदेश इस फिल्म में छुपा हुआ, कितने मज़ेदार हॉस्टल वाले पल और इमोशनल सीन्स, भावुक दृश्य सब मिलजुल कर एक बेहतरीन मिक्स है ये जो फिल्म है। ये रिश्तों की जो उलझन होती है, जो ताना बाना होता है उसको बड़ी खूबसूरती से दिखाया है। और दोस्ती कैसा रिश्ता, वो तो मतलब हर रिश्ते को पीछे छोड़ दे। तो यहाँ इस फिल्म में एक दृश्य स्टैंड आउट कर जाता है जब सुशांत का किरदार और जो उनके दोस्त हैं सब मिलकर उस बेटे को, अपने बेटे को, सुशांत के बेटे को कहानी सुना रहे हैं जो मौत से लड़ रहा है। और ठीक उसकी सर्जरी से पहले उसको ये बताया जाता है कि उन्होंने इतनी मेहनत मशक्कत की वो शील्ड जीतने की लेकिन सारी कोशिशें फेल हो गई और वो शील्ड नहीं जीत पाए। तो ये जो सीन है, वो जो ये जब बात खुल के बाहर आती है और वो बच्चा सोचता है कि मतलब ऐसा भी होता है, फिर आप लोगों को कैसा फील हुआ, इतनी कोशिश की लेकिन फिर भी आप लोग जीत नहीं पाए, आप सेकंड आए, तो इसके बाद भी जिंदगी चलेगी आगे, रुक नहीं जाती वहां पर। ये बहुत बड़ा संदेश इस फिल्म का है ना। चलिए सुनते हैं ये मजेदार गाना।

0: नजारा फिल्मों का।
1: और अब समय हो चला है कि मैं आपसे कहूँ जरा बाय बाय, और चलते चलते रिश्तों की मिठास हिंदी फिल्मों के साथ इस विषय को रैप अप करते हुए, क्योंकि रक्षाबंधन का ये जो खूबसूरत सा त्यौहार हम सब अपने परिवार के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ मनाएंगे, इसकी शुभकामनाएं देती चलूंगी और वो आइकॉनिक गाना आपको सुनवाऊंगी जो भाई बहन के रिश्ते के साथ सिनोनिमस हो गया है। किशोर कुमार आप सबके लिए हरे राम हरे कृष्णा से चैनिका को दे दें इजाजत। बाय बाय।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक

0: 紹介。
1: 8 बजकर 9 मिनट आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया लोग पूनम के संग ओनली ऑन 107 दिल से दिल तक।

8:15। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं आनंद मलिन, आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक और फिल्म का नाम मृत्युदंड। अब ये जो उदित नारायण और अलका याग्निक की जोड़ी है ना, भारतीय प्लेबैक सिंगिंग के इतिहास की सबसे जादुई लोकप्रिय और सफल जोड़ियों में से एक है। 1990 के दशक और 2000 के शुरुआती दौर में बॉलीवुड पर इन्हीं दो आवाजों का एक छत्र राज था। इस जोड़ी से जुड़ी हुई और भी बातें साझा करूंगी, लेकिन उससे पहले इसी जोड़ी का गाया हुआ खूबसूरत नगमा आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही अगले 9 बजे तक बने रहिए।

संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

कहूँ ना प्यार है का टाइटल ट्रैक आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की खूबसूरत आवाज में। इन दोनों गायकों की आवाज में एक अलग ही नेचुरल, आप कह सकते हैं अट्रैक्शन है, एक मिठास है, जहाँ उदित नारायण की आवाज में एक जोशीला रूमानी और बहुत ही एनर्जेटिक अंदाज में उनका गाना होता था, वहीं अलका याग्निक की आवाज में उतनी ही कोमलता, गहराई और मासूमियत झलकती थी। और जब ये दोनों एक साथ गाने के लिए आ जाए ना, तो बस गाने में एक अलग ही जादू पैदा हो जाता था। और ऐसा ही जादू आप सब तक पहुंचाने की मेरी छोटी सी कोशिश है। फिलहाल 8:32 और अगला नगमा आप सब तक फटाफट पहुंचा देती हूँ। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए। ओनली ऑन 107, दिल से दिल तक।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक

8:46 और आज बातें हो रही हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की खूबसूरत जोड़ी के बारे में, उनके गाए हुए गीतों के बारे में। 90 के दशक के रोमांटिक दौर में कुमार शानू के साथ साथ उदित अलका की जोड़ी सबसे आगे निकल गई। उन्होंने यश राज फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शंस और नदीम श्रवण, जतिन ललित, अनु मलिक, एआर रहमान जैसे दिग्गजों के संगीत निर्देशन में अनगिनत सदाबहार सुपरहिट गाने गाए, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध गीत तो मैं पहुंचा चुकी हूं और कुछ आगे भी पहुंचाऊंगी। तो बस बातें क्या करना, फटाफट आप सब तक पहुंचाए देती हूँ। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

8:56 और पूनम के जाने का समय है एकदम करीब। तो आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त बिल्कुल मत रहिए। इस आशा के साथ पूनम लेती है विदाई। टाटा बाय बाय।